0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हजरत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के यहां, अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी। और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, वो चलती जा रही और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिया को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजुकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है, गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला, वला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबुउलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाए बुउलतिहिन्न, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहां शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपें। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नीम उरिया कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی،

उन्होंने छोटे से कार्ड छपवाए जाए बस दो वर का, और उसमें सिर्फ सूरत नूर की ये आयत एक तरफ अरबी में और एक तरफ तर्जुमा विद रेफरेंस, बस एक पैगाम आपके नाम, नथिंग एल्स। तो ये छपवाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो जिसके बारे में भी आप समझें कि आप उसको मुंह से बोल के कुछ नहीं कह सकते, तो आसान तरीके से उसको कार्ड दे दीजिए, बहुत खुलूस का मैसेज उस पर लिखकर कि आप उसको बुरा ना मानिए। और फिर वो हदीस भी तो याद आनी चाहिए ना कि बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपके दौर में फिर ये चीज रही नहीं थी कि आपकी उम्मत की कोई औरत हो और फिर वो बेहिजाब हो, या फिर वो सतर से बेनियाज हो, या वो जीनत की नुमाइश करे, इम्पॉसिबल। फरमाया लेकिन वो दोनों ही जहन्नम में जाने वाले हैं। एक तो मर्दों के बारे में कि जिनके हाथ में गाय की दमों की तरह कोड़े होंगे, जालिम हुक्मरान जो हर एक पे बरसाएंगे बगैर किसी तमीज के, और दूसरे वो औरतें कासियातुन आरियातुन मायलातुन मुमीलातुन। कासियात किसवा कहते हैं कपड़े को, लिबास पहने हुए, आरियातुन नंगी, कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएंगी, मायलातुन मर्दों के मायल होंगी, उनके जाल में गिरफ्तार होंगी, मुमीलातुन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ला यदखुलन जन्नता ये जन्नत में दाखिल न होंगी, वला यजिदन रीहहा उसकी खुशबू न पाएंगी, ये जन्नत में दाखिल न होंगी जन्नत की खुशबू न पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दूर तक फैल रही होगी। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। तो अगर वो उस खैर से कोई महरूम होना चाहता है तो हो, आप उसके क्या कर सकते हैं? आपका काम तो सिर्फ बताना है। अगर किसी को अल्लाह ने दिल नहीं दिया महसूस करने वाला तो उसकी अपनी मर्जी। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम है सिर्फ पहुंचाना। आप डंडे के जोर पर किसी को नहीं ढांक सकते, और जितना बिगाड़ माशरे में आ चुका है इसको पलटते वक्त लगेगा। इसके बारे में किसी ने कमेंट भी लिख के दिया था, वला युद्दीन अजीमतहुन्ना, हमारे जानने वालों में दो पाकिस्तानी लड़कियां फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका गईं। वहां जाकर एक लड़की ने तो जैसा देश वैसा भेष पर अमल किया और यूनिवर्सिटी में बहुत पसंद की जाने लगी। दूसरी लड़की ने अपनी इस्लामी और कौमी रिवायात को बरकरार रखा, जिस पर उसे अपनी सहेली और दूसरे पाकिस्तानियों से खूब तनकीद का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी में कोई पार्टी का मौका आया तो पहली वाली लड़की ने दूसरी से कहा कि प्लीज अब तुम कल वहां अम्मा भी बनकर ना आ जाना, और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम यहां क्यों इस तरह दुपट्टा ओढ़े रखती हो। दूसरी लड़की ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम इस तरह क्यों ड्रेसअप होती हो। तो पहली लड़की ने कहा ताकि मैं अच्छी लगूं स्मार्ट लगूं। दूसरी ने कहा किसको? पहली कहने लगी सबको, खुद को। दूसरी ने कहा तो सुनो, मैं तो खुद को इतना कम माया और सस्ता नहीं समझती कि हर एक के लिए सजती फिरूं। मैं जरूर अच्छा लगना चाहती हूं मगर चंद मखसूस लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। पहली लड़की बोली कि हाँ ये है एक पॉइंट जो सोचने के लायक है। और इस तरह उस लड़की ने बगैर तकरीर किए मुख्तसर सी बात में इस्लाम में जीनत को छुपाने के तसव्वुर का एक रुख पेश कर दिया। जब हम अपनी नुमाइश करते हैं कभी सोचा हमने किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम खूबसूरत नजर आना चाहते हैं नामहरम मर्दों के लिए, क्यों क्यों? रीजन क्या है? ये सिंपल रीजन नहीं कि सारा माशरा ऐसे है, ये रीजन नहीं है एक मुसलमान औरत के लिए। अल्लाह ने तो कुरान इसलिए उतारा लियकून लिलआलमीन नजीरा, सारी दुनिया को खबरदार करे बुरे अंजाम से। कहा ये कि हम खुद वैसे हो जाएं और वैसे ही बने फिरते रहें? आखिर मुश्किल क्या है? क्या मुश्किल है? कहीं मुश्किल नहीं, मुश्किल अपने अंदर है, यहां है मुश्किल दिल में। जिस दिन ये ठीक हो गया ना, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि औरत होने के नाते ये फर्ज है, सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा, और फर्ज की पूछ होगी, हिसाब होगा,

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत साव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: अपने बहन भाइयों के साथ जो है आपके वालदे मोहतरम भी जो है वो आपने बहुत सारी चीजों को देखा, जरा इसको मुख्तसर करके बताया हमारे सामान्य नाजरीन को।
1: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 की जंग जो है ये दरअसल फरवरी 1965 में रण कच्छ के मुकाम पर शुरू हुई थी और वहां से ये झड़पें शुरू होती होती ये आजाद कश्मीर में चली गई और वहां पे छम जोड़ियों का महाज, जहां पाकिस्तान ने जबरदस्त शिकस्त दी इंडिया को, भारत को, और भारत ने ये कहा कि अच्छा अब हमें यहाँ पे शिकस्त हो गई है और बहुत ज्यादा इलाका जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है, तो हम अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे। तो उसने क्या किया कि फौरन से पहले हमला कर दिया सियालकोट, नारोवाल और लाहौर और कसूर, इन बॉर्डरों पे उसने हमला कर दिया जहाँ हमारे सिर्फ रेंजर्स बैठी हुई थी और हमारी आम फौज जो थी जिनके पास, और ये मैं लोगों को बताता हूँ, जो ये बहुत जरूरी है कि आप अमन के जमाने में ना बॉर्डर पे टैंक लेके जा सकते हैं ना आप हैवी गन्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर है उसके अंदर ये सब मुल्कों ने लिखा होता है। ये जंग की सूरत में एक अलहदा चीज है, आप जो जो सा असला मर्जी इस्तेमाल करें, जो मर्जी लेके जाएं, लेकिन पीस के जमाने में ये चीज आपको इसकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के ये जो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो रेजिमेंट थी उनके पास 303 की गन्स थी और उनके पास कॉलर्स राइफल थी जो कि टैंक को तबाह करने के काम आती है, और इससे बड़ा असला उनके पास नहीं था। तो अचानक 5 और 6 सितंबर की रात को जब हमला हुआ, तो उस वक्त तो मैं सियालकोट कैंट पे और मेरा जो घर था वो बिल्कुल आखिरी सड़क पे था जहाँ पे डिवीजन हेडक्वार्टर भी था, हमारे घर के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई फील्ड रेजिमेंट थी जिनके पास छोटी गन्स थी और पीछे मैदान था, उसके बाद पर्थ था, एक साइड पर गांव आता था, दूसरी तरफ पर्थ पोथ पे दो गांव थे, और उसके बाद जो है थोड़े से 5-6 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर शुरू हो जाता था। तो इंडिया का हमला इतना सख्त था कि इसको रोकने के लिए और उसकी गन्स के फायर जो थे ये हमारे सरों पे से गुजरते थे, और एकदम अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ घर में कोठी में मौजूद थे। तो ये शुक्र है खुदा का कि कोई गोला जो है वो हमारे कोठी या साथ वाली कोठियों में नहीं गिरे, लेकिन थोड़ी दूर आगे फार्म था जो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 150 मीटर के फासले पे हमारे घर से होगा, या 100 मीटर या 150 मीटर, वहां उस डेयरी फार्म के अंदर जो है वो कुछ गोले गिरे और इस तरीके से जो है वो हमारी फौज के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने फौरन आकर सब जगह पे खुद ही ये जो मोर्चे होते हैं और कंदकें खोदी और लोगों को हमें आके जगाया और कहा कि आप लोग ने कहीं जाना नहीं, कोई लाइट ऑन नहीं करनी, कोई किसी किस्म की गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी ताकि दुश्मन को आपकी पोजीशन का पता ना लग जाए, अगर ज्यादा गोले नजदीक आके गिरे तो आप लोगों ने इन खनकों में जगह लेने नहीं है। और उनकी बहादुरी ये देखें कि हमारे रिटायर्ड फौजी जो थे वो रजाकारों को लेके, क्योंकि उनको अलर्ट तो पहले ही कर दिया गया था कि दुश्मन किसी वक्त भी हमला कर सकता है, तो वो ट्रकों पे वहां पे आ गए और उन्होंने बकाया जो कैंट का और दूसरा इंतजाम था वो संभाल लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात राजा साहब वो मैं आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त जो जज्बा था, जो लोग बॉर्डर से और बॉर्डर के बिल्कुल करीब गांव के रहने वाले थे लोग, वो अपना सब कुछ छोड़कर वापस आ गए, उनकी बच्चियां और बच्चे भी वापस आ रहे थे, लेकिन उनका जज्बा इतना ज्यादा था, इतना अच्छा था कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अभी 16 साल का हुआ था और ये इतनी खूबसूरत यादगार है मेरे लिए कि देख करके वही उन लोगों के जज्बे ने हमारे फौज के जज्बे बढ़ा दिए। हालांकि दुश्मन ने आपको पता है कि सियालकोट पे छविंडा का जो महाज है वो टैंकों के साथ लड़ा गया और इंडिया ने पूरी बटालियन जो थी पूरा ब्रिगेड जो था वो टैंकों का छुंडा पे उसने भेज दिया।

0: चिंडा पे इसलिए भेजा कि अगर वो चिंडा को फतह कर लेता है तो ये सीधा गोजरांवाला पहुंच जाएगा और गोजरांवाले पहुंचने में उसको कोई रोक नहीं सकेगा और गोजरांवाले पे वो कब्जा करने से पाकिस्तान को दो टुकड़े कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी जगह थी जिसके ऊपर हमारे पास उस वक्त 100% 30 टैंक थे। जो टैंक जो थे वो भागते हुए आते थे, चुंडा की तरफ जाकर फायरिंग करते थे, सियालकोट के महाज पे फायरिंग करते थे और वही छम जोड़िया जाकर लड़ते थे। क्योंकि अभी तक पीछे से जो पेशावर या कोहाट और ये दूसरी जगह बन्नू और ये इस्लामाबाद में जो हमारी अफवाज थी उनके जो असला था वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। तो इसको पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश की कि हमारी जो रेलवे लाइन्स हैं उसको उड़ाया जाए। तो उन्होंने सियालकोट वजीराबाद पे जो जंक्शन है उसको तबाह करने की कोशिश की। तो अल्लाह के फजल से वो भी लोगों ने, हम बाद में बात करेंगे, वो भी लोगों ने आसानी से जो है वो उसको
1: चलिए शाह जी, इस पर बात करेंगे, जो शहदा हुए उस पर बात करेंगे, बाकी मेहमान भी होंगे तो उस वक्त इस पर जो है वो डिबेट भी करेंगे। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया।
0: ओके जी।
1: समय नाज़रीन, ये थे आपके हमारे अपने थिंक टैंक से ये तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जो बात कर रहे थे।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: समाइन इस वक्त हमारे साथ रहमतुल्ला बेग साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। रहमतुल्ला बेग साहब यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। एक ज़माने में मलक सदीक साहब जो थे वो उनके पास ये चीफ ऑर्गेनाइजर वाला होता था। अब जो है रहमतुल्ला बेग साहब हैं, यह मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। उनके साथ हैं चेयरमैन हैं मास्टर याकूब साहब, सदर हैं उनके आफ्ताब रोमी साहब, बाकी इनकी टीम है जो इनके साथ काम करती है। ये एक मिले जुले साथी हैं, आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। तो आज जो रहमतुल्ला बेग साहब हमेशा ये जितने दिन होते हैं ये दिन मनाते हैं मुस्लिम लीग के हवाले से, कौमी जो दिन होते हैं, तो नवाज शरीफ साहब के साथी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं, ये गाजी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सआदत है कि जो इस वक्त तक जो है वो ठीक है, अपना जो है अपना काम चला रहे हैं, सेहत अच्छी है, और फौज 65 की जंग के ये गाजी हैं। बेग साहब हम आपको सलाम करते हैं, 65 की जंग के आप गाजी हैं।
2: जी राज साहब बहुत शुक्रिया नवाज़िश।
1: बेग साहब जब ये 65 की जंग थी तो आप डेफिनेट फौज में थे, आप चूंकि खिलाड़ी भी थे, तो फौज में जो है वो खिलाड़ी की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आपके पास जो कलर भी आपने देखा, वो कोट भी देखा, पाकिस्तान का कलर भी देखा, बेग साहब
2: वो जो था वो 66-67 का था, जब मैं गाजी हूँ 65 का, 65 में मैं आर्मी में नहीं था, मैं 66 में गया हूँ आर्मी में। 65 में हमारे घर के दो ट्रक होते थे, और जब जंग शुरू हुई तो हम लाहौर कैंट से असला लेके जाया करते थे बॉर्डर पे, हडियाराबाद बॉर्डर पे और सेम किर बॉर्डर पे, और क्या बताऊं बहुत ही शिद्दत के साथ हमारे ट्रक के ऊपर एक बम गिरा जिसने उस सारा ट्रक तबाह कर दिया। लेकिन अम्निशन जो लेके जाना था वो हमने जल्दी से निकाल के बाहर रखा, फिर दूसरी गाड़ी आई तो वो ले गई। तो हम तो अल्लाह का फजल
1: कर रहे थे। आप काम तो फौज के लिए कर रहे थे ना?
2: जी बिल्कुल, फौज के लिए कर रहे थे, फौज अपने मुल्क के लिए कर रही थी, और मैं भी अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान के जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा था कि हम आज सुबह नाश्ता जो है वो हम लाहौर में आके करेंगे। तो मैंने कहा देखते हैं कैसे होता है नाश्ता इनका लाहौर में, और बड़ा जज्बा था, शौक था, और हमने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी दुनिया सारी गवाह है। और अल्लाह ताला का फजल करम से पाकिस्तान जो था वो जो उन्होंने नक्शा बनाया था वो उसका उनका तोड़ फोड़ हो गया, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में मुतारफ हुआ पाकिस्तान। और आज भी आज का दिन जो है वो हम बड़ी खुशी से मनाते हैं कि हमने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरी दुनिया में लगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को बचाया, अपने जानो माल कुर्बान की हमने पाकिस्तान पे, और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे।
1: बेग साहब आपने हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए, आपने हमेशा कौमी दिन जो है वो उजागर किए, आपने हमेशा कौमी दिन मनाए, 6 सितंबर का दिन भी आप मनाने जा रहे हैं, आपकी छतरी के नीचे मनाया जा रहा है। तो बेग साहब उस जमाने में जब आपको पता है अंग्रेज का दौर था, फौज थी, और फौज में जो है वो भर्ती करते वक्त अंग्रेज भी नहीं भर्ती करते थे, अल्लाह ताला ने बंदों को तो कहना कौमों में पैदा किया, तो बाकी जिसका अमल ज्यादा होगा, जिसका तकवा ज्यादा होगा वही कामयाब होगा। तो बेग साहब ये अंग्रेज क्यों नहीं भर्ती करते थे ये कमी?
2: देखिये बात सुन, अंग्रेज जो है ना उनका कल्चर और हमारा इस्लामी, हमने पाकिस्तान का नारा लगाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस नारे के साथ ही पाकिस्तान बनाया था, जो अंग्रेजों को और हिंदुस्तानी हिंदुओं को बिल्कुल गवार नहीं था, बिल्कुल उनको ये उनके लिए ये एक आफत थी, लेकिन मुसलमानों के लिए आजाद मुल्क, और आजाद मुल्क के बाद 1965 की जंग जो है इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी मुसलमान हो या पाकिस्तान में कोई भी दूसरे मजहब के लोग हों, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी लोगों ने, बेइंतहा कुर्बानियां। हमारे जैसा घर जो सारा उजड़ गया, एक ट्रक था उसी के ऊपर हमारा गुजरो काम चलता था। मेरा बड़ा भाई जो था वो उसको देखभाल करता था, ड्राइविंग भी करता था। तो जब ट्रक हमारा खत्म हो गया तो वो वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल पर वाल्टन रोड के ऊपर वो ट्रक हमारा एक साल तक पड़ा रहा। उसके बाद हमने कबाड़ियों को बेच दिया।
1: एक साहब ये एक बड़ी तारीख है, हिस्ट्री वाइज आप बातें कर रहे हैं, ये रियलिटी है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हिस्ट्री है। तो बेग साहब आप ये अपना दिन मनाते हैं आज भी, जो आप 6 सितंबर का दिन जो है आपकी छतरी के नीचे मनाया जा रहा है, तो बेग साहब उस वक्त भी दो नंबर लोग थे कि मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को गालियां निकालते हैं। तो जब कोई मुस्लिम लीग की बात होती है तो मुस्लिम लीग को कैश कराने के लिए वो मुस्लिम लीग के बन जाते हैं, तो उस वक्त भी दो नंबरी होती थी।
2: दो नंबरी तो हर दौर में रही है, उस दौर में भी दो नंबरी थी। और दो नंबरी जो है ना उसको हमने पिस्पा कर दिया था पाकिस्तान में। हमने दो नंबरी होने नहीं दी क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है खयूर अवाम है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं, और उनकी नजर में जो ऐसे बदकार लोग होते हैं उनका किला कुमा करते हैं।
1: बेग साहब आपके लीडरान जो है वो बरतानिया तशरीफ लाए हुए हैं, पंजाब की वज़ीर-ए-आला भी बरतानिया तशरीफ लाए हुए हैं, तो ये कौन सा जो नंबर तीन किस्म का जो बातचीत चल रही है जिसपे कुछ चीज निकलेगी बाहर, कोई आप खबर आज 6 सितंबर के हवाले से बड़ी खबर दें?
2: देखें जी, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक पेज पे जैसे चल रहे हैं, अगर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ। अगर इनमें दराड़े पड़ गई और ये अलहदा हो गए तो फिर कुछ कोई चीज।
1: तो बेग साहब दो पेज से क्या मुराद है अपना, क्या नमाज जरदारी साहब और नवाज शरीफ पार्टी तो दो पेज पे नहीं है।
2: दो पेज पे चले आ रहे हैं आज तक, इसीलिए हुकूमत है। अगर दो पेज पे ना होते तो हुकूमत जो है नहीं होती।
1: बेग साहब देखें, जरदारी साहब ने खपे पाकिस्तान का नारा लगाया, दूसरी बार उनको सदारत मिल गई। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का नारा लगाया, तीन बार उनको वजारत उज़्मा मिल गई और चौथी बार उनके भाई को वजारत उज़्मा मिल गई। तो बेग साहब जो
2: राय साहब आपकी बात बड़ी हो
1: जी जी,
2: अहमदा भी जो है ना वो सियासी जमातों के लीडर ही होंगे जिनको वजीर आजम और जिनको सदर बनाया जाएगा, और वो इलेक्ट आएंगे, अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो खुद नहीं बन के आ जाते, अवाम उनको वोट देती है और अवाम की ताकत के जरिए वो आते हैं मैदान अमल।
1: तो बेग साहब बड़ी अच्छी बातें आपने की, आप पाक फौज के साथ काम करते रहे, आपका बिजनेस था, आपने इतनी बड़ी खबर बताई कि आपके ट्रकों पर जो असला जाता रहा, आपने ये बात बताई आपका ट्रक भी जो है तबाह हुआ और कितना अरसा पड़ा रहा उसका, फिर आपने उसको कबाड़ी के आगे भेजा। बेग साहब ये बड़ी तारीखी बातें कर रहे, आगे मेयर साहब ने बड़ी तारीखी बातें की। बेग साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहें?
2: मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां भी देते हैं, और ये जो दो नंबर के लोग हैं इनसे बचना चाहिए। इनको पाकिस्तान का इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान किन किन मुश्किलात से निकल के यहाँ तक पहुंचा है। लिहाजा पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान को कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, जो देखेगा उसका किला कमा किया जाएगा,
1: किला कमा किया जाएगा। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मैम, मशहूर आपने मुझे वक्त दिया।
1: सामान नाजरीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहतरम मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब। सामान हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो आपकी आवाज़ के स्टूडियो से आपका मेज़बान अब्दुल कय्यूम भट्टी आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रीन कार्ड स्पेशल के साथ हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए या हम तक अपनी आरा पहुंचाने के लिए आप हमें 3929-7104 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक के पेज ग्रीन कार्ड स्पेशल पर भी कॉमेंट कर सकते हैं। आप हमें FM 92.9 और केबलनेट 88.9 पर लाइव सुन रहे हैं। आज के प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं हम आपके लिए, लेकिन आप आज के प्रोग्राम में जाने से पहले शुरू करने से पहले हमारे को होस्ट अली भी मौजूद हैं। अली
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज का हमारा प्रोग्राम कुछ ख़ास होगा और उसकी मुनासबत कुछ हमारे योमे दिफा और योमे फ़ज़ाइया के हवाले से होगी। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। और सामीन, जिस तरह भट्टी साहब ने आपसे कहा कि आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, आप ज़रूर कॉल कीजिए। आप अपने तासरात, अपने इजहार ख्यालात आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ख़ास तौर पे जो हमारे लिए एक बहुत यादगार दिन है, जब हमारी सरहदों की हिफाजत हमारे मुल्क के शाहीनों ने की। 6 सितंबर 1965 की बात है, 7 सितंबर 1965 की बात है। तो आज हम इस प्रोग्राम में अपने उन शहदा को भी याद रखेंगे, उन गाजियों को भी याद रखेंगे जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत की और हमारे मुल्क को एक दफ़ा फिर नाकाबले तस्खीर बना दिया। जी भट्टी साहब।
0: जी अली, बिल्कुल जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन करवाया प्रोग्राम का, 6 सितंबर के हवाले से और 7 सितंबर के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है। उन आज का प्रोग्राम हमारे उन गाजियों और शहीदों के नाम है जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश करते हुए इस कौम की, पाकिस्तानी कौम की हिफाजत की, जिन्होंने फौरन बाहर के तसल्लत से हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हम अपनी जानों का नजराना पेश करके आज हम अगर आज़ाद हैं तो उन्हीं की वजह से आज का प्रोग्राम उनके नाम है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा भट्टी साहब। आज का प्रोग्राम हम अपने शहीदों और गाजियों के नाम करते हैं। 6 सितंबर की सुबह जब हमारे दुश्मन ने, उस वक्त के दुश्मन ने हमारे मुल्क पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, तो हमारे गाजियों ने, हमारे शहीदों ने, मुल्क के सबूतों ने, माँ के नौजवानों ने, बेटों ने हमारी सरहदों की हिफाजत की और उनके इस नापाक अजायम को जो है वो खाक में मिला दिया और अपनी जानों का निजराना दिया। और आज हम बिल्कुल, जो अगर 1947 के बाद हम दोबारा से आज़ाद थे तो बिल्कुल उसी उन्हीं शहीनों की बदौलत आज़ाद थे। 6 सितंबर का दिन हमारी हिस्ट्री में जो है वो सुनहरे हरूफों से लिखा जाता है और सुनहरे हरूफों में ही याद किया जाता है। और इसकी वसासत है, जिस तरह अभी हमने अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक नगमा भी आपकी खिदमत में पेश किया, वो बिल्कुल मैडम नूर जहान का नगमा था जो उन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड करवाया। और जब हमारे नौजवानों को, हमारे फौजियों को एक जज्बे की ज़रूरत थी उस वक्त, खा वो लोग जो मैदान जंग में खुद नहीं जा सकते थे, उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से हमारे फौजी साथी, फौजी भाइयों का, हमारे शहीदों का जज्बा बढ़ाया। कुछ लोगों ने नगमे, इस तरह के मिली नगमे गाए, कुछ लोगों ने जो है वो उनके लिए वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया, नाश्तों का इंतज़ाम किया, उनके लिए अच्छी से अच्छी सहूलतें दी। और जो लोग ज़ख्मी थे, जो गाजी थे, उन लोगों के लिए मरहम पट्टियों का इंतज़ाम किया। तो हमारी फौज के साथ हमारी कौम शाना बिशाना खड़ी थी और हमारे फौजियों ने, हमारी कौम ने दुश्मन के नापाक अजायम को खाक में मिला दिया।
0: जी अली, मैं आज एक कमेंट पढ़ रहा था किसी किताब में कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया 6 सितंबर को, जब पाकिस्तानी अफवाज अपने दिफा कर रही थी, तो इंडिया ने अपने रेडियो पे अनाउंस किया कि हम लाहौर से 2 से 3 किलोमीटर दूर रह गए हैं। उनकी फौजों ने झूठ बोला और अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये अनाउंस किया कि हम लाहौर से 2 से 3 किलोमीटर रह गए हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर थे। तो एक फौजी जो था, वो जो सड़क के किनारे वो मोर्चा जन था, उसके साथ एक वो माइलस्टोन भी था जिसके ऊपर 42.6 लिखा हुआ था कि लाहौर वहाँ से कुछ इतने किलोमीटर है। तो उसने वो स्टोन जो था, माइलस्टोन जो था, उसको उठा के आगे जाके सड़क के दरमियान जाके रख दिया और उसके ऊपर लिखा ब्लडी 42.6 माइल्स, मतलब कि आपको खून की नदियां यहां पे बह जाएंगी, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, हमारे खून के हमारी लाशों के ऊपर गुजर के आप जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते। तो ये हमारे फौजियों और जवानों का ये हौसला था। और आज अगर हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो उन फौजियों और शहीदों के खून की बदौलत है, और जो शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। तो इस तरह जिस तरह अली आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग थे सब ने बढ़ चढ़ कर उस वक्त में यकजहती का मुजाहरा किया, पूरी पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई हुई दीवार बन गई, और ज़िंदगी के हर शोबे से जिस तरह के आप बता रहे थे जो गुलूकार थे, अगर गुलूकारों को ही ले लें तो उनके अंदर आपको पता है मैडम नूरजहां है, और उसके साथ जो मेहदी हसन है, फिर और भी दूसरे, ये तो इनके तो हमने बहुत नगमे सुनते रहते हैं, और भी बहुत सारे गुलकार थे जिन्होंने अपने उस वक्त नगमे गाए, और यही नगमे जो थे उस वक्त हमारी कौम का हौसला बढ़ाते थे, हमारे फौजियों का हौसला बढ़ाते थे। और उसके बाद बड़ी मशहूर बात है कि लाहौर का हलवा पूरी बहुत मशहूर है, उस वक्त लाहौर के शहरियों ने हलवे पूरी से अपने ये जो फौजी थे जवान थे उनके ऊपर उनके मोर्चों के अंदर जाके हलवा पूरी से उनकी तवाज़ो करते थे, उन तक खाने पहुंचाते थे, हलवा पूरी से उनकी तवाज़ो की जाती थी अपने मतलब फौजियों की जो उनकी खातर उनकी हिफाजत कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल भट्टी साहब आपने सही कहा, और क्योंकि 1965 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे हमारे जो हैं वो बुज़ुर्ग अभी भी हयात हैं जिन्होंने वो फौज और उस जज्बे को उस जंग को अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लोगों ने खुद से पार्टिसिपेट किया होगा, और हम बिल्कुल हमारी ख्वाहिश होगी कि वो ऐसे लोग जिन्होंने उस वक्त फौज का साथ दिया या ऐसे लोग जिन्होंने वो जंग उस जंग को अपनी आंखों से देखा अगर वो कॉल करके अपने उन जज्बात का दोबारा से इजहार करेंगे हमारी कौम के सामने, खासतौर पर जो यहाँ पे नई नस्ल परवान चढ़ रही है। मेरा कल भी मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, किसी बच्चे की खत्म कुरान आमीन थी, तो वहां पे भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे हमें अपने जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, उन बच्चों को बताना चाहिए कि ये दिन या कोई भी दिन, खास दिन, उस दिन की अहमियत बतानी चाहिए कि इस दिन को क्या हुआ था। अगर ईद है तो ईद की उन्हें अहमियत और फजीलत बतानी चाहिए। अगर जिस तरह 6 सितंबर है, 7 सितंबर है, जश्न आज़ादी, 14 अगस्त है, 23 मार्च है, कोई भी ऐसा दिन है, आप अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा, उनके अंदर एक जस्तजू पैदा होगी, वो खुद से पूछेंगे कि ये दिन क्या है, क्यों मनाया जाता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हम 3-4-5 दिन पहले अगर 14 अगस्त आनी होती थी, हम बाजारों में निकल आते थे, झंडियां लेके आते थे, हजारों झंडियां जो है वो हम लगाते थे, उनको धागे के ऊपर लगाना, और ये भी हमें अच्छी तरह याद है जिस दिन 14 अगस्त होती थी उस दिन बारिश हो जाती थी, मगर हमें उसका दुख नहीं होता था कि हमने सारी रात मेहनत करके हमने झंडियां लगाई और अगले दिन बारिश हुई, वो झंडियां सारी जो है वो पानी की नजर होगी, मगर हमारे अंदर एक जज्बा था, जस्तजू होती थी। इसी तरह जब 6 सितंबर का दिन आता था तो हम 6 सितंबर को टीवी के ऊपर इतने नगमे लगते थे कि अब हम वो नगमे जो है हम वो नगमे बेसिकली सुन सुन के बड़े हुए। 7 सितंबर आती थी तो हम एयरपोर्ट के ऊपर या जहां पर ये फौजी हजरात जो है वो अपने ये फौजी साजो सामान की एग्जीबिशन लगाते थे, हमारे वालदैन हमें वहां पे लेकर जाते थे ताकि हमें पता चले कि क्या, फिर जस्तजू पैदा होती थी कि अब जब वहां पे हैं तो आपको पता चले कि आप कैसे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई थी, कैसे जंग लड़ी जाती है, कि आपको हर दिन की फजीलत का पता होना चाहिए। और जब तक ये हमें पता नहीं होगा हमारे बच्चों को, या जब तक हम अपने घरों में ये माहौल नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं चलेंगी, और अगर बच्चों को ये चीजें पता चलेंगी तो फिर उनमें जो है वो मोहब्बत, वो वतन की मोहब्बत पैदा होगी, वतन के लिए जज्बा पैदा होगा। यहाँ पे हम देखें, अगर आप सारा दिन टीवी के ऊपर बैठ के आप सियासत की बातें चलती रहेंगी या ड्रामों की बातें चलती रहेंगी तो हमारी जो बुनियादें हैं वो बच्चों को बुनियादों का नहीं पता चलेगा। बच्चों, हमारी बुनियादें जो हैं वो 1947 से पहले अगर आप देखें या 1947 के बाद देखें, दो मुख्तलिफ तारीखें हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान बनाने के लिए माओ ने अपने बच्चों को शहीद किया, माओ ने खुद कुर्बानी दी, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए। 1947 के बाद जो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उन सरहदों की हिफाजत जो है वो हमारी फौज ने की। 1948 की जंग लगी, उसके बाद 1965 की, 1971 की, हमें बांग्लादेश को अपने लख्ते जिगर को हमें अलहदा करना पड़ा, फिर उसके बाद कारगिल की जंग हुई। तो ये हमारे लिए वो बहुत लगा लो कि पाकिस्तान के सीने में बहुत ज्यादा जख्म है, पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा जो है वो टुकड़ा अलहदा करना पड़ा। मगर ये जब तक ये हिस्ट्री तारीखें जब तक हमारे बच्चों को नहीं पता चलेंगी, उनमें वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं होगा, और ये जज्बा हमने पैदा करना है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो फॉरनर्स हैं, यहाँ स्कूलों कॉलेजों में उन्हें डेनमार्क के हवाले से तारीखों का बताया जाता है, कौन सा दिन खास दिन है, क्या दिन होता है, और बच्चे फिर उस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, बच्चों को पता होता है क्या दिन है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप यहाँ पे नहीं करते, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीजें नहीं पता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन वालदैन से जो ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं ताकि बच्चों को पता चले कि ये दिन क्या है, दिन कैसे दिन, ये इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन को हुआ क्या था, उनको थोड़ी सी जस्तजू उनके दिलों में पैदा हो ताकि वो इस इन दिनों को उसी तरह एहतमाम के साथ मनाएं जिस तरह हम मनाते थे। जी भट्टी साहब।
0: जी अली, बिल्कुल ये एहतमाम करना चाहिए, और वालदैन के तरबियत बच्चों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती है, और जब तक वालदैन अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे तो यकीनन बच्चों को नहीं पाकिस्तान की तारीख का पता चलेगा, पाकिस्तान की मुश्किलात का पता चलेगा। और जब वालदैन को नहीं, वालदैन को अपना इलम भी बढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मीडिया सुनना चाहिए, ताकि उनको ये भी पता चले कि और नई नई चीज़ों का पता चले, जो नई किताबें लिखी जाती हैं या जिन लोगों ने अपनी याददाश्तें लिखी हैं वो भी किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उस वक्त के जो उस जंग के अंदर इन्वॉल्व लोग थे उन्होंने कैसे किया, कि क्या किया, और कैसे कैसे अपने मतलब के लोगों का, अपनी फौज का, अपने वतन का, अपने अपने दायरे कार में रह के उसका कैसे दिफा किया। और जी अली, आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने सही कहा, और ये तारीख भरी पड़ी है, तारीख के औराक भरे पड़े हैं इन चीज़ों से कि एक एक देखें, एक एक फौजी की अगर उसके ऊपर हम किताब लिखना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि किस कदर कुर्बानियां दी हैं, किस कदर हम लोगों ने, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी हैं। आप देखें, आप करंट सिचुएशन ले लें पाकिस्तान की, आप 1947 के बाद की ले लें, जब भी पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खासा कोई मुसीबत आती है, कोई मसला, कोई परेशानी आती है, तो हमारी फौज जो है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, खा वो जंग हो, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी फौज जो है वो शाना बशाना अवाम के साथ खड़ी होती है, अपनी कौम के साथ खड़ी होती है। और इसी तरह हमारी कौम को हमारी फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, और वो पीछे कब हमारी कौम खड़ी होगी, जब हमारी कौम को पता चलेगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि क्या है हम लोग, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी तारीख क्या है, किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के बाद आज़ाद रखा गया, किस तरह पाकिस्तान को मजबूत रखा गया। और इस सिलसिले में बल्कि ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तो चले एक फिर भी माहौल बना होता है, यहाँ पे डेनमार्क में या पाकिस्तान से बाहर जहां पे है, कोशिश होनी चाहिए कि मसलन जिस तरह हमारी यहां पे अम्बेसीज होती हैं, अम्बेसीज को इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। मसलन देखा हमने 14 अगस्त के ऊपर एक प्रोग्राम होता है, लोगों को, लोग अपने बच्चों को साथ लेके चले जाते हैं, अम्बेसी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। जिस तरह मसलन आप फर्ज करें अम्बेसी में कोई और निजी तकरीबात होती है, कभी मुशायरा हो गया, कभी इस तरह की चीजें होगी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अम्बेसी को भी, कि ऐसे दिनों को भी, ऐसी तारीखों को भी मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, उनमें एक जज्बा पैदा हो, ना कि सिर्फ अगर आप एम्बेसी में जाएं तो आपको इस तरह के मवाद लिखे हुए पड़े हुए मिल जाएं, मगर प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए, छोटी मोटी एग्जीबिशंस लगनी चाहिए ताकि हमारी कौम को, हमारे बच्चों को पता चले। जी हमारे साथ कॉलर लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई, ज़हीर अर्ज कर रहा हूं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब,
2: आपको और रेडियो आपकी आवाज के तमाम सामईन को, और जो हजरात आप बैठे हैं, भट्टी साहब बैठे हैं, राय साहब बैठे हैं, और खास तौर पे एक नौजवान आपसे पहले जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। बात देखें ये है कि आप नौजवानों पर फख्र है, आज से 1965 की आप बात कर रहे हैं, उन पर भी फख्र था और आप पर भी फख्र है। आज ऐसे मालूम हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक क्या कहते हैं जवेद हाशमी नहीं हमारे पास, माशाल्लाह कई जवेद हाशमी हैं, कई राशिद मनास हैं, कई मेजर तफैल हैं, कई अजीज भट्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई आप 14 सितंबर 6 सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा बहुत अच्छा लगा। कोई कसर तो नहीं छोड़ी शौकत भाई ने, लेकिन यह है कि चूंकि समय जानते हैं मैं गग्गू मंडी का रहने वाला हूँ, हमारे गग्गू मंडी में पाकिस्तान की तारीख में मेजर फैल साहब शहीद हुए थे 1965 में। तो इसी तरह जैसे सारे शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, उनके लिए दुआएं की गई, तो इसी तरह गग्गू मंडी में भी ब्रिगेडियर साहब आए, काफी फौजी सहबान, और उन्होंने दुआएं पढ़ी, चादर चढ़ाई, यानी कि अपने उन नौजवानों को, उन शहदा को याद किया। तो ये सरमाया है अली साहब भट्टी साहब हमारा, सिर्फ उनकी यादें हमारे लिए सरमाया है, और आज हम फख्र करते हैं उन शहदा ने जाने दी हैं, उस नुसरत जहां डॉक्टर ने कुर्बानियां दी हैं, उस मेजर साहब ने कुर्बानियां दी हैं, राशिद मनहास ने कुर्बानियां दी हैं। तो आज हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और हम इस पर, इस धरती पर फख्र भी करते हैं। लेकिन अफसोस, यहाँ एक मैं अफसोस करूंगा, अफसोस ये है कि जुमे वाले दिन से, जुमे रात वाले दिन से अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह इनकलाब तो ना आया, आज धरनों की उम्र 31 दिन हो चुकी है, धरनों की उम्र 31 दिन हो चुकी है मेरे हिसाब से, इनकलाब तो ना आया, लेकिन एक तूफानी सलाब ने हमें आन लिया। तो इसी धरनों में वही म्यूजिक चलता रहा, वही डांस होता रहा, और उस वो जो मरे बेचारे 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा अब उनकी तादाद हो गई है सलाम में, उनके लिए दो लफ्ज ना किसी से निकल सके, इस पर एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन बार बार बार बार वही दुआ है, वही इल्तजा है, वही आप जवानों की बातें सुन के जो ना ये उम्मीद की किरण भी फूटती है, और देखुश भी होता है कि अगर देखें इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा हम नौजवानों की वजह। जी
0: जाहिद साहब, अब्दुल कयूम भट्टी बात कर रहा हूँ सर, सलाम कबूल कीजिए। सर आप 1965 के अंदर आपकी उम्र क्या थी और आप किधर थे, और क्या था जज्बा उस वक्त जिधर आप थे, और लोगों के अंदर क्या जज्बा था, और फौजियों के बारे में क्या आपके मतलब के आम लोगों के जज्बात क्या थे, किस तरह से आप फौजियों को मिलते थे? जिस तरह के मुझे याद है जब फौजी मतलब के जब हम छोटे थे फौजी हमारे पास से गुजरते थे तो हम उनको सलाम करते, छोटे छोटे बच्चे होते थे हमें नहीं पता होता था लेकिन हम उनको सलाम करते थे, आज भी बच्चे मतलब फौजियों को सलाम करते हैं, उस वक्त आपका क्या जज्बा होता था? मतलब 1965 की अगर कोई यादें वगैरह वाबस्ता हैं आपके पास, याद है आपको, तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ।
2: जी माशाल्लाह भट्टी साहब, मेरी तो 1965 की मार्च की पैदाइश है, तो मैंने ये सारे वाकयात बाद में देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन 1971 में मैं एक आपसे शेयर करता हूँ। हमारे चाचा जी हैं, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र दराज करे, मियां हनीफ साहब, वो 1971 की जंग में कैदी थे। तो उनसे जो ना जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं उनसे मुलाकात होती है, तो उनसे हम सबसे पहले सबसे ज्यादा बातें उनसे जो ना मैं तो उस वक्त की करता हूँ, जंग की करता हूँ। तो साहब कैदियों के बारे में बता रहे थे कि वो चाचा जी हमारे अनीर साहब हमें ये बताते हैं, वो कहते हैं कि बेटा असल में जब जंग हो रही होती है दुश्मन के सामने तो जज्बा ही इतना होता है, जज्बा इतना होता है, हम कैदी होने के बावजूद, सिर्फ मैं नहीं, हर जितने भी हम कैदी लोग थे, हमें थोड़ा सा भी दुश्मन का डर नहीं था, हमारी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था। हालांकि हिंदू इतना जालिम है, वो हम पे जुल्म बहुत करते थे, यहाँ तक के अस्तगफुरुल्लाह ये वो बात है जो मेरे चाचा जी ने मेरे कानों में डाली है कि हमें खाना खाने में भी मिलावट करके दिया जा रहा था। लेकिन देखें तारीख में भट्टी साहब, तारीख में जो बातें हैं वो सुनहरी रूप में लिखी जाएंगी, जिस तरह 1973 के कानून जो भुट्टो साहब ने दिया, इसी तरह इन जंगी कैदियों को भी भुट्टो साहब ने छुड़ाया था, ये भी उनको भी एक जो ना सलाम जाता है, उनकी भी ये तारीफ की बात है। तो ये बातें थी, इस तरह है कि हम देखें, हम जिस भी आज भी उस वक्त भी आज भी तारीख बड़ी पड़ी है भट्टी साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह फौजी भाई को सलाम है, फौज को सलाम है। देखें आप ये लेटेस्ट ही बात कर लें कि अब सैलाब आया हुआ है तो सारे अंदर बड़े हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, और फौज हमारी बेचारी जो है ना वो सारी जो ना मदद कर रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है, उनको मदद दे रही है। तो ये फौज को सलाम है, फौज की उस वक्त भी कदर थी, बाद में भी रही, कुर्बानियां भी फौज की हैं, और फौज को बदनाम भी करते हैं। देखें ये सारा सिनेरियो जो है सारा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बात सिर्फ ये है कि हम अपने वतन के लिए, आप लोग जो काम करते हो, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, ये सिर्फ मैं पिछले प्रोग्राम पर भी राय साहब से बात कर रहा था, तो मैंने शौकत साहब को 2-3 दफा उसकी तरी, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है, सिर्फ मैं उनको जानता हूँ, हालांकि वो पीटीआई से उनका तलक है, मेरा पीटीआई से तलक नहीं है, लेकिन किसी दोस्तों ने मुझे ना मजाक करना शुरू कर दिया कि आप यार उसको बड़ा खाते हो। नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ये कहता हूँ कि जो सच्चा इंसान है वो कहां से भी हो, जो सच बोलता है, सच का साथ दो, सच के साथ हो जाओ, सच की मदद करो। तो ये बातें हैं मेरे भाई।
1: आपने जहीर साहब बिल्कुल सही कहा, और इस सिलसिले में हमारी फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाता है। जिस तरह अभी हमने पहले भी बात की, अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के ऊपर कोई आफत आती है तो सबसे पहले जो स्टेप इन होते हैं वो फौजी होते हैं, हमारे फौजी भाई होते हैं, और उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, ख्वाब वो बैरूनी सरहदें हो, अंदरूनी सरहदें हो, उन्होंने हमेशा खतरात का सामना किया है, चाहे वो अंदरूनी खतरात हों, बैरूनी खतरात हों, हमेशा से ही फौज ने जो है वो हमारी सरहदों की हिफाजत की है, हमारे मुल्क की हिफाजत की है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैं अभी शुरू में भी बात की कि ये जज्बा जो है अब हमारे जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे हैं, उन तक ये मुंतकिल करने की ज़रूरत है, उन बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है। ये दिन जो हमारे मुल्क में बड़े बड़े दिन आते हैं, जिन दिनों में पूरे टीवी पे, पूरे हर जगह पे इसी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम चलते हैं और चला करते थे, और ये बच्चों को मुंतकिल करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, हम यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर, ख़ा वो यूरोप है या दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान की एम्बेसीज को इस तरह की डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें लेके चलनी चाहिए ताकि बच्चों को इन तारीखों का पता चले। और मैं आपके विसात से और जितने भी हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं या जो ऐसे एक्टिव लोग हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कभी भी आपका एम्बेसी में इस तरह की कोई मीटिंग हो या किस तरह की जब हमें कभी मौका मिले, तो हमारी ये नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात या हमारी ये रिक्वेस्ट एम्बेसडर साहब को ज़रूर पहुँचाएँ, या कि आप 14 अगस्त के साथ, 23 मार्च के साथ ऐसे दिनों का भी एहतमाम करें अपनी एम्बेसी में, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को हमारी हिस्ट्री पता चले। जब तक लोगों को हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, लोगों में जस्तजू पैदा नहीं होगी इस दिन को मनाने की, इन तारीखों को पढ़ने की, और जो हमारी इतनी तारीख में औराक है, उन औराक को पलटने की भी जो है वो जस्तजू उसी वक्त ही पैदा होगी जब लोगों को पता चलेगा कि है क्या, चीज़ें हुई कब थी, कहाँ से हुई। तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। तो हम अगर आप इसके साथ कुछ कहना चाहते हैं तो, वरना फिर हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं।
2: बस मैं जनाब इंशाल्लाह ताला अली जुवेद भाई 1965 के शहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और आप नौजवान जो हाजिर दौर के नौजवान है सबको सलाम पेश करता हूं, और अपने आप जज्बों को कायम रखें, इंशाल्लाह ताला
1: क्योंकि हमारा ये इस तरह का प्रोग्राम तो नहीं होता, मगर इसके साथ साथ क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत बड़ा दिन था, तो हम अपने फौजी भाइयों को, वो शहदा, वो गाजी, वो पुराने लोग जिनका इस जंग से या इस दिन से किसी ना किसी तरह से ताल्लुक रहा है, उनकी नज़र हम एक मिली नगमा पेश करते हैं, जो उस वक्त का नगमा था जब लोगों को उनमें जज्बा पैदा किया गया था। तो हम आपकी नज़र एक नगमा जो है पेश करते हैं।
2: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।

0: करने दिए, इनके पीछे पड़े, इनको कोई सबक सिखाए, इनको कोई गलत लफ्ज बोले ताकि इनको कोई शर्म आए कि वाम जाग उठी है और वाम पढ़ी लिखी है। हम जब भी बोलते हैं वालदेन का फर्ज है, वालदेन का, और वालदेन का जो फर्ज है वो बच्चों को स्कूल भेजता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, उनकी फीसें डबल पे करता है, उनके गाड़ियों के पैसे, अपनी रोटी बेचारा कम कर देता है, एक सलवार कुर्ते में गुजारा करता है पूरा पूरा साल राजा, और बच्चों को स्कूल भेजता है।
1: बिल्कुल आप सुन रहे हैं जनाब, राजा हसना साहब हैं, मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और राजगान वेलफेयर सोसाइटी के भी सदर हैं। ये आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। राजा साहब उस बारे में बताइए, जो आप आने वाले बच्चों के बारे में कोई प्रोग्राम भी सुना कर रहे हैं। हेलो आज जी राजा, सॉरी राजा साहब के साथ हमारी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, हम दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं राजा साहब से। तो सामिन, ये जो जज्बात होते हैं कौम के अपने अपनी फौज के लिए, अपने वतन के लिए, ये ऐसे मौके ही होते हैं जिनके अंदर आप अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपने वतन की हिफाजत के लिए जज्बात का इजहार करते हैं और उन शख्सियात के लिए, उन लोगों के लिए करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर, अपने सब कुछ कुर्बान करके अपने वतन की हिफाजत की या अपने अपने आने वाली नस्लों को बचाया, एक आज़ादी की कीमत दी, अपने खून से बढ़कर सबसे ज़्यादा नजराना खून का होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, तो उन जिन लोगों ने अपना खून भी बहाया इसके लिए, हम उनकी आज बात कर रहे हैं कि 1965 की जंग के हवाले से। तो अली, आप कुछ और बात कहना चाह रहे हैं?
2: जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने सही कहा, और जिस तरह हमें अभी बीच में कॉल्स भी आ रही हैं, तो जिस तरह हमारा सियासत का तो खैर ये प्रोग्राम नहीं होता, मगर फिर भी हमारे जो कॉलर्स हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं इस सिलसिले में। जिस तरह अभी आप शुरू में बात कर रहे थे कि जब दुश्मन ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, वो उनका प्लान ये था कि वो लाहौर में सुबह का नाश्ता कहाँ पे करेंगे, दोपहर का खाना कहाँ पे खाएंगे और रात को वो हर चीज़ वो फतह करके चले जाएंगे, मगर उस वक्त शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके इन सोचों को खाक में मिलाने के लिए MM आलम हमारे पास मौजूद थे, जिनका रिकॉर्ड आज तक तारीख में कोई भी नहीं तोड़ सका कि उन्होंने कितने सेकंड्स में उन्होंने दुश्मनों के साथ प्यारे जो हैं वो खड़े खड़े तबाह कर दिए। उसके साथ अगर जो लोग खुशकिस्मती से पाकिस्तान की सरहद में आ चुके थे, उसमें आप देखें कि मेजर अजीज भट्टी जैसे शहीद जैसे जो लोग हैं वो उनके सामने सीसा पलाई दीवार बन गए थे, वो उन लोगों ने उनके पुलों के ऊपर, बल्कि मैं कहता हूं कि उस वक्त ऐसा जज्बा था कि जहां पे उन्हें लगा कि अगर दुश्मन इस पुल के ऊपर से गुजर के आ गया तो वो वाकई कब्जा कर लेगा, हमारे फौजियों ने उन पुलों को ही तबाह कर दिया। जैसे उनको पता चलता था कि ये जो है ये जो टैंक है हमारी तरफ बढ़ रहा है, वो फिदाई हमले कर देते थे। सबसे पहला फिदाई हमला भी अगर आप देखें तो वो पहले फिदाई हमलों में ही शामिल होता है कि अपने सीने के ऊपर बम बांध के वो दुश्मन के टैंकों के नीचे घुस जाते थे, वहीं पर उनको नेस्तो नाबूद कर देते थे। ये था जज्बा, ये थी सोच कि पाकिस्तान को किस तरह परवान लेके चढ़ना है। इस हमारे यहाँ पे आज तक अगर आप आजादी की सांस ले रहे हैं, हम आजादी की सांस ले रहे हैं, हमारा पाकिस्तान जो है वो है, तो उसमें हमारे जो शहीद हैं उनका खून है, इस मिट्टी में शहीदों का खून है, वो खून की वजह से आज जो है वो हम अपने आप को मजबूत कहते हैं, उस खून की वजह से आज हम फख्र महसूस करते हैं। और यकीनन ये बात हमारे बच्चों को भी पता चलनी चाहिए, यकीनन ये बात जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनसे हमें मालूम हुई, उन्होंने हमें बताया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये चीज़ें लेके चलें। उसके लिए हमें हम कहाँ पे भी हों, अगर हमें छोटी मोटी तकरीबात करनी पड़े, प्रोग्राम करने पड़े, चाहे वो अम्बेसी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को पता चले। तो हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी बताइएगा, आप क्या आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
3: आपने कौन सा टॉपिक रखा हुआ है?
2: मैं आपको बता देता हूँ, आज क्योंकि वैसे तो हमारा ग्रीन कार्ड का प्रोग्राम होता है, मगर आज के दिन की मुनासबत से हमने 1965 जो 6 सितंबर का दिन, 1965 और 7 सितंबर जो आज यौम फिजाई है, उसके हवाले से हम आज का प्रोग्राम करें। अगर उस हवाले से आप कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगी तो यू आर मोर देन वेलकम।
3: मुझे तो सबसे पहले तो मेरी तो जितनी भी तमाम लाइफ गुजरी है, मेरी तो 65 में मेरी तो नहीं थी पैंट के ये इसमें लड़ाई में, मैं नहीं थी मौजूद उस वक्त, लेकिन

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामे नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हमारे साथ अदनान अमीन अली हैं जो कि थिंक टैंक भी हैं, तजिया भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और साथ जो हैं ये अपनी पार्टी के बड़े मुतर्रक कारकुन भी हैं और आने वाले इलेक्शनों में वे हिस्सा लेने की अभी से वो तैयारी कर रहे हैं, पहले भी ये ले चुके हैं हिस्सा। तो अदनान, आपको खुश आमदीद कहते हैं अदारा आपकी आवाज़ पर।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है। अदनान, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के ताज़ा तीन हालात के हैं, सियासी हालात हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी अखबारात में खबरें और सुर्खियां आ रही हैं, तो आज के हालात को किस तरह देख रहे हैं आप?
2: सर, सबसे पहले तो बात यह है कि आज की जो सबसे अनफॉर्चुनेटली एक खबर है वो है हमारे भाई सिकंदर सदीकी साहब जो इलेक्शन लड़े थे पिछले साल कोपेनहेगन के लोकल इलेक्शन, उनको आज टिकचल से उनका केस चल रहा था कि वो सही तरीके से नहीं लड़े क्योंकि उनकी रास की मसला था, तो उनने अपना केस पिछले से में भेजा हुआ था और उनने आज कोपेनहेगन कमून को कहा है कि आप इस मामले में सच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक किस्म का डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया।
1: तो इसका मतलब है कि अशम आगा जो है उनकी सीट पर आ जाएंगे या दोबारा इलेक्शन होगा?
2: सर, ये तो एक वो तो उसकी सीट पे आ जाएंगे, मगर मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चाहती कि दोबारा इलेक्शन हो, मगर जो डेनमार्क के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ हैं उनने रफड़ डाला हुआ है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं सही नहीं थी और बेस सही नहीं था, मगर उसका फायदा तो कोई नहीं है क्योंकि एक सीट के पीछे आप इलेक्शन कराना चाहेंगे कि पूरा इलेक्शन कराना चाहेंगे, तो ये इसका कोई क्या कहते हैं नतीजा नहीं है, तो यही बनेगा आखिर में, यही मेरे ख्याल से होगा कि हाशम जो है उसको सीट मिल जाएगी और फिर क्या कहते हैं वो भाई कौन पच्ची को अस्पिछया करेगा जो अगले तीन साल होंगे ना नेक्स्ट इलेक्शन तक, यही इसका नतीजा आ रहा है। और जो सिकंदर भाई हैं वो फिर अब पार्टी के अंदर अपनी को बिल्डअप करेंगे और डेफिनेटली पार्लियामेंट के इलेक्शन, रीजन के इलेक्शन, कमून के इलेक्शन, उसकी तैयारी और उसकी प्रिपरेशन में करेंगे और यही कर सकते हैं वो और आशम और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं।
1: मतलब उनके पास खुला टाइम होगा आने वाले इलेक्शन को फोकस करेंगे?
2: मेरे ख्याल से तो यही करेंगे और इस चीज को क्या कहते हैं देखेंगे, बाकी अपनी उनकी अपनी राय है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये तो अब उनकी लीगली टीम और वो सोचेंगे, मगर ये खबर तो यही है कि उनने अपनी फैसला यही किया कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहुत बहुत सारा टाइम लगेगा और हो सकता है वो अगले इलेक्शन तक क्या कहते हैं फैसला ना आए, तो
1: फिर ये तो फ्री करोने को ये ठीक है, ये अखबारी अखबारात में या कानूनी पेचीदगियाँ जो वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, चलती भी रहेंगी आने वाले वक्तों में भी, लेकिन अगर इनकी सीट ज़ाया नहीं हुई तो फ्री करोने के पास एक सीट जो है वो अभी भी है, स्टिल है।
2: जी जी जी, वो तो है, मगर वो ये है ना कि देखा जाए तो इसके पहले से ये भी तो है ना कि लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि इसको अब जो इसको 7-8 महीने पे मिली है वो भी इसको वापस करनी चाहिए क्योंकि उसका हकदार नहीं था, तो काफी क्या कहते हैं।
1: लेकिन अगर फिर ये देखा जाए, ये तो मेरे ख्याल एक लाजानी सी बात है, एक बंदा इजलास अटेंड कर रहा है तो जब आप मजदूरी अपनी पूरी करते हैं तो आपको मजदूर का आपके घर करेगा तो आप पूरी उसको मजदूरी देते हैं, ये नहीं कहते कि वो जो आया था कैसे आया था क्यों आया था।
2: वो देखिए ना सब वो पितावी में भी आ रहा है ना, तो वो बहुत कुछ आ रहा है तभी तो क्या कहते हैं देखा जाए।
1: इसका मतलब ये कानूनी जंग खत्म नहीं होगी?
2: जो कानूनी जंग खत्म हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर पार्टी ने यही फैसला किया कि अब इसको अब जब इसने फैसला कर लिया
1: कर दिया जाएगा।
2: हाँ कि ये कोर्ट में नहीं जा रहा, तो हम इस केस को अभी तो खत्म करें और क्या कहते हैं आगे आगे बड़े जरूरी काम है उन पर फोकस करें। इसकी जरूरत तो नहीं ना कि आप
1: जरूरत नहीं
2: ये
1: है।
2: इस
1: चलें,
2: बात
1: ये
2: पे
1: तो बड़ा
2: लड़ते
1: अच्छा
2: रहें
1: किया
2: कुछ
1: आपने
2: नहीं।
1: बता दिया अदनान। बाकी बजट की बात है, आप ही कमोर को बजट को देख रहे हैं, आप भी काफ़ी चीज़ों का हिस्सा रहते हैं, देखते रहते हैं, पता भी चलता रहता है। कोपनहेगन कम्यून का बजट भी जो है, तो उसको भी थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास खबर है तो शेयर करें, क्या मिलने जा रहा है जो है ना लोगों को, आम शहरियों को क्या मिलने जा रहा है, कि यही नहीं है जी हमारा
2: वैसा
1: बजट नहीं पूरा होता,
2: वो तो
1: अब कहाँ
2: देखा
1: से
2: जाए ना,
1: इनकम आएगी।
2: वो तो अपने अपने कमून के अंदर जो मान गए हैं वही करती हैं। अभी तक तो कोपेनहेगन कमून ने क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं बजट की पुली कर ली है, और ये सितंबर के एंड की और फर्स्ट वीक जो अक्टूबर की आएगी उसमें वो अपनी अप्रूवल भी करा लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से दूसरे कुछ कमूनों के भी बनते जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना बना लिया है। एबिस्लो ने भी नेगोशिएशन चल रही है, तो कमिंग डेज में पता चलेगा। कल इनकी जो मीटिंग होती है मंथली, वो मीटिंग भी हुई थी, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं। तो ये चीजें क्या कहते हैं चलती रहेंगी, और इसके साथ साथ नेशनल बजट भी जो है वो भी शुरू हुआ हुआ है। तो फिर काफी चीजें क्या कहते हैं चल रही हैं इस वक्त, और कमिंग डेज में पता चलेगा कि क्या बेहतर हुआ क्या नहीं बेहतर हुआ। नहीं राजा साहब, मेरे पास उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही मुझे पता है कि नमस्ते इंडिया, उन्होंने 6 सितंबर वाले दिन अपना प्रोग्राम किया हाउस प्लेस पे टाउन हॉल के सामने, और उसके अंदर इंडियन एम्बेसी उनके साथ थी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अपना पूरा कल्चर बताने की कोशिश की है। और क्या कहते हैं देखा जाए तो ये उनका क्या कहते हैं अपना तरीका था और अपना वेरियर था। होपफुली हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी क्या कहते हैं इससे कुछ सीखे और इस तरह के कुछ इन्वेंट कराने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में भी शो किया जाए। कोशिश तो की गई थी मगर वो इतनी कोऑपरेटिंग स्टाइल से नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे एम्बेसडर को ज्यादा क्या कहते हैं उस वक्त भी फोर्सेस एक्शन का ज्यादा शौक था, ये नहीं था पता कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना प्रेजेंट किया जाएगा और जितना पाकिस्तान को पेश करेंगे उस नतीजे से ही क्या कहते हैं फायदा होगा। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी जो एम्बेसडर पाकिस्तान से आए वो इस बात फोकस करे कि हम भी कोई इस तरह का इन्वेंट कर सकें जिसमें एम्बेसी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे कि पाकिस्तान की ये क्या कहते हैं व्यूअर और वेयर जो है वो बेहतर किया जाए।
1: बात आपकी बात में वजन है, लेकिन जो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं, फेस्टिवल वगैरह कराते हैं, बेसिकली ये फंड रेजिंग की तरफ जो है वो चीज़ें चल पड़ती हैं, वो मकासद जो होते हैं कि वो सारे फोत हो जाते हैं। अगर ये फंड रेजिंग में स्टाल ही लगाने हैं तो स्टालों को लाकर जो है वो व्यूअर्स को भी बुलाना है, लोगों को भी बुलाना है, पार्किंग के भी मसाइल होंगे, फिर दिन का मकसद तो ख़त्म हो जाता है।
2: नहीं राजा साहब देखें जिस तरह से इनने टाउन हॉल पे किया है ना, उस तरह से देखा जाए ना तो आप देखें कि पिछले करीबन 10 सालों में कितने इंडियन आ गए हैं, और जब इंडियन कम्युनिटी एक क्या कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है तो उनने फिर सोचा कि हम अपने कल्चर को भी किसी तरह की कहते हैं रेस्पेक्ट करें। चल कोशिश की गई थी इस पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, मगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या इन इंफॉर्मेशन दी है फॉरेन मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ये पाकिस्तानी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। जैसा आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को वीजा लेने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी तक हम कैटेगरी 5 के अंदर ही हैं और कैटेगरी 5 के अंदर से बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए हमने
1: तो
2: काम करना है।
1: अदनान,
2: तो फिर
1: यहाँ
2: हमें
1: जो फोनिंग्स होती हैं, तंजीमात होती हैं, या ये डेमोक्रेट मुल्क है, यहाँ से तो हकूक के लिए लोग बाहर निकलते हैं, आप भी जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि लोग जाते हैं पार्लियामेंट के सामने भी अपने हक मांगते हैं, टाउन हॉल के सामने भी जाते हैं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों में एक्टिव है, पिछले कितने अरसे से आपको अगर कोई याद हो, कोई एक आध मिसाल हो कि गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं?
2: यार सब देखें, गैर मुल्की निकलते तो हैं ना। अब देखें, परसों चौथे नहीं, दो तीन दिन पहले, जैसे ही मैंने आपके प्लेटफॉर्म से कहा था कि 5 सितंबर को एक एंटी इस्लामिक डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बड़ा हुआ है। इतना बड़ा तो नहीं हुआ, मगर उनने पूरी पॉपुलरशिप करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र ये है कि उसके अंदर कुछ टेररिस्ट पार्टियां हैं जिन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है, क्योंकि वो नाज़िम इंसान था और इस तरह की चीज़ें थी। पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी निकलते हैं, मगर इस वक्त मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया मसाइल इतने ज़्यादा बन चुके हुए हैं कि जब एक एक बात को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मगर इंसान को सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक प्रोविंस का स्टेटमेंट देके और वो डिवाइड करना जो है ना, वो उस वक्त ख़त्म होगा इधर भी और पाकिस्तान में भी, जब सब एक टेबल पे बैठेंगे और फेयरनेस एक मुल्क में आएगा। जितनी देर तक ये चीज़ें नहीं ना होंगी, उतनी देर तक हमें मसाइल हमारे मुल्क में भी रहेंगे और यहाँ पर भी रहेंगे।
1: अदनान देखे ना, मिसाल के तौर पर ये हम मिसाल दे रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे। अगर किसी इवेंट में स्क्रीमें जो 80,000 की 90,000 की बिक जाएं, और दूसरी तरफ आपने ये कहा जी कि ये जो अपना कैटेगरी जो है 5 वाला जो है, या कौन सी कैटेगरी वाला मामला है, वीज़ों का मामला है, उस मामले में अगर लोग सब मिलजुल कर इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि देखें जी ये जमहूरी मुल्क है, आपको हकूक अपने जमहूरी तरीके से मिलेंगे। घर में बैठकर या शगल शगल करके, मेला करके, पाकिस्तानी सियासत करके, यहाँ डेनमार्क में रहते हुए डेनिश पासपोर्ट जेब में डालते हुए हमें सियासत करते भी बहुत वक्त सोचना चाहिए। लेकिन डेफिनेट जो बंदे आए, अपना प्यारा वतन तो हर किसी को प्यारा होता है, मोहब्बत एक जैसी सबको होती है, इसमें कोई किसी को ये ना कहे मुझे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत है या दूसरे को ज़्यादा मोहब्बत, सबको मोहब्बत होती है। लेकिन अब जो चौथी जनरेशन जा रही है, इसकी भी मोहब्बत भी इसके मुल्क के साथ है।
2: सब देखें कि दो जगह पर देखें, आपने जो कैटेगरी 5 की मसाइल दी है ना, मुझे पता है कि इस वक्त बड़ी क्या कहते हैं लोगों को, आज मेरी एक जगह एक बात हुई तो उसने भी यही कहा, कहते हैं देख हमने अपने फूड ये जिसको हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि डिस्क्वालिफिकेशन में, कहते हैं हमने फूड वापस बैक कर लिया। मैंने कहा देख वो कुछ मसाइल की वजह से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से, मेन का मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, वो बेसिकली फ्रंट पेज से उनने चीजें देखी हों, उनने अंदर से ना देखा हो कि क्या है। और मैंने कहा मुझे तो नहीं ना पता कि यहाँ की जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो बंदे के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजती है, या वो भेजती भी है क्या नहीं, उनके अपने रेस्पिडेंट आते हैं। तो ये यहाँ की जो नई जनरेशन है उनको पता है कि मसाइल हैं यहाँ पे, यहाँ की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी चीजें हैं। आज एक जैसे ये आपको मालूम होगा कि ये जो आजकल ज्यादा हेलसिंग मस्जिद के बारे में बात चल रही थी, आज फिर ये सिकंदर भाई की बात चल गई, फिर कुछ और बातें चलती हैं, तो ये मिसाइलों का सबको पता होता है। बस ये होता है कि मिल के बात करने की जरूरत होती है, और आपने किसी निकलने तो फिर आपको तो तरीके से निकलना पड़ता।
1: यहाँ का कानून कायदा जो होता है, जो उसको लेकर चलना होता है, मेरी पसंद या दूसरे की पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती। यहाँ तो जमहूरी तरीका है, जितने लोग जो आएंगे वोट डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, जितने लोग जो है वो जेन्युइन डेमोन्स्ट्रेशन पर आएंगे उतना ज्यादा उनकी बात सुनी जाएगी।
2: सही है, ये आपकी बात सही है। आप देखे ना, कोई गुस्सा करे ना करे, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको एक साल पहले कहा था कि इलेक्शन भी बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमान पे आएगा, और आस्ता आस्ता आप चीजें देखना कि कुछ चीजें टफ होंगी। आपके सामने है कि कुछ चीजें तो इलेक्शन भी बड़ा टफ आया था, आपने हेल्सिंग में भी देख लिया क्या हो गया है, और चीजों में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर को जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, अल्लाह का शुक्र है डेनमार्क के अंदर दो बिग पार्टियां विंस्टर और कंजर्वेटिव ने उस चीज को कंडेम किया है, मगर उस पर हमको भी फोन पेज पे आना चाहिए। कुछ लोग हमारे आए हैं, उन्होंने लिखा भी है और उसके खिलाफ भी लिखा है और कुछ स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने फेसबुक पे लिखा था, आज एक बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे दिया हेल्थ के मामले पे, कहता है बात तो तुमने सही की है, मसला ये है कि ये तो कोर्ट में जाएगा। मैंने कहा ये तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आप एक परमिशन लेके कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये कह रहे थे कि कल्चर हाउस हम बना रहे हैं, मैंने कहा आपने इजाजत दे देनी थी, इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, बस फर्क ये रहना था कि इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, मगर जिस जगह से आप बैंड कर रहे थे वो फिर प्रॉब्लम तो उस वक्त आनी थी। अब इन्हें आपसे सच बोला, आपने इनसे ज्यादती की है तो बात इन्हें मस्जिद कह दिए तो नहीं बनाना, मसला कोई है नहीं है। जिसके साथ मसला था वो एक स्पार है उधर कोई स्टोर है, उसने मसला डाला हुआ था, वो भी उसकी भी आज सच कहानी निकल आई है कि उसकी पार्किंग के अंदर 4 से 5 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती है एक टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं कि उसको मुसीबत क्या थी और उसने इतना बड़ा क्या कहते हैं इस तरह की हरकत क्यों की है, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही।
1: अदनान देखे ना, किसी की पार्किंग में गाड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि इतनी घर बात पे दाव लगा के जो है वो कानून को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए, ये भी तो कोई तरीका नहीं है, खुद भी तो कोई बंदे को एटिकेट्स होने चाहिए।
2: देखिए राजा साहब, बंदा देखे कुछ 1 में से 20 होते हैं जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अब्सलोन का मुंबई रहता हूँ, यहाँ पे एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ उसका मसाइल का था। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे और 38% जा रहे थे गोरों पे। मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मसाइल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो ये कह रहा था देखिए हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, तो फिर आपके खर्चे फालतू हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेड़ मार दी या कुछ कर दिया तो 20 चपेड़ मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: एक बंदे की गलती को एक बंदा ही काउंट किया जाए, सबको काउंट ना किया। अदनान आपने देखा डेफिनेट, आप बच्चों को सुबह देखते हैं, मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, स्कूल के बच्चे पे जाते हैं, उसके बाद जो है वो वालदैन छोड़ने भी आते हैं, उसके बाद फुटबॉल पे भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में भी जो बच्चे जाते हैं, तो आप सुबह देखें कि किस तरह जो है वो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे लाइनें लगी होती हैं, किस तरह साइकिलों की लाइनें लगी होती हैं और कितने बच्चे कितनी तादाद में कॉलेज के बाहर खड़े हों, तो बंदा होता है यार इतने लोग आते हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होकर देखें तो बंदा कहता है इतने लोग आते हैं, बाने में जाकर देखें तो बंदा होता है यार इतने बच्चे छोटे आते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए ना कि जनरेशन तब्दील हो रही है, ये बच्चे क्या सीखें, ये यही कुछ सीखेंगे जो इनका कानून कहता है इनको सिखाता है।
2: जी जी, ये देखे ना ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट डे था स्कूल का, मैं अपनी कमरे में गया और मैं बच्चों को छोड़ने गया, मैं बोर्ड का मेंबर भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी। एक ने गाड़ी गलत खिला दी, कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मतलब तेरे पास जगह नहीं है, तो कहती है टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तो मैं नहीं तो पता कि फर्स्ट डे है, कहती है मुझे पता था। तो मैंने कहा फिर तुम 10 मिनट पहले क्यों नहीं आई, ये मतलब तो ना कि तुम 10 मिनट पहले नहीं आ सकती तो तुम पूरी सड़क ब्लॉक कर दो। मैंने कहा 10 मिनट पहले आ जाती तुम्हें जगह मिल जानी थी, मगर तुम 10 मिनट लेट आई हो तो अब तुम ये मतलब तो नहीं ना कि तुम पूरी सड़क बंद कर दो। कहती है नहीं मुझसे गलती होगी। मैंने कहा गलती होगी है, मगर अगली बार सोचो, क्योंकि ये जो चीज तुम कह रही हो ये तुम्हारा बच्चा देख के भी फॉलो करेगा।
1: देखें लोगों को जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। मेरे नज़दीक ही एक मैं देख रहा था एक चीज़ खुली है बर्गर किंग टाइप इस तरह की बेकसार चीज़ें जो हैं, वो खुद जो है वो सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, तो तकरीबन फरलांग डेढ़ फरलांग लाइनें लगी होती हैं। आप मुझे बताएं कि पहले भी उस एरिए में पार्किंग नहीं है तो जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, जो बिल्डिंगों में रहते हैं वो कहाँ पार्क करेंगे, कुछ पूछने देखने वाला है, लेकिन नहीं जी टैक्स आएगा, इनकम होगी टैक्स आएगा।
2: जैसा सब देखिए इन चीजों पे ना सारा काम कर किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला लोगों को भी पता है, क्योंकि ये मसाइल हैं, यही वन ऑफ द मसाइल कोपेनहेगन में काफी टाइम लगा है और मैंने उनका बजट नहीं पढ़ा, मगर उनने भी बड़ी बहस की है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह ताला इन चीजों पर काम
1: बड़ा
2: किया जाए।
1: बजट है कि अपनी वो फिक्र ही नहीं पड़ी जाती।
2: नहीं नहीं वो ये ना सर।
1: चलिए अदनान, आप चूंकि इसलिए आपसे मल्टी किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते आते रहते हैं, बातें भी करते हैं, खुद उसमें शामिल भी होते हैं। अदनान, काफ़ी टाइम हो गया, कम्यून के इलेक्शन हो गए हैं लेकिन अभी तक हम जो है वो इधर से उधर बाल, उधर से उधर बाल, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह की बातें चल रही हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं आ रही, कोई ठोक पॉलिसियाँ बाहर नहीं आ रही कि ताकि ये काम करें तो अगली दफा इन्होंने वोट नहीं लेने दोबारा।
2: सब वोट सब ने लेने होते हैं, मगर मसला ये होता है कि जो पहला साल होता है ना वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो सीखनी होती हैं, टेक ओवर करनी होती हैं। आप इंशाल्लाह ताला ये जब बजट बन जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ तब्दीली आएगी और कुछ चीज़ों में भी आएगी।

0: किसी को, तो वो सारी आपकी बातों को जो असल मकसद है वो तब्दील कर देते हैं।
1: सब मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, और मेरा काम है कि लोगों के लिए बेहतरी करना। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और यही मैं अपने नक्श कदम पर लेके चलूंगा। और अल्लाह की बस मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इस नेक काम में ही गए, और आगे उनको अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कामयाबी दे। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ। अभी आपकी अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूँगा, फिर उसको वो सो जाएगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे। तो इस तरह बंदे का होता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा इरादा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकता है ना फिर, वरना तो बंदा
0: नहीं,
1: पीछे हो
0: एक
1: जाता
0: दिन
1: है।
0: में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे
1: इरादा
0: बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया है।
1: साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वो ही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वो ही होना है। नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है, और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
0: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान, मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता छोटा मोटा, ज़ाहिर है कितने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर हैं, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
1: नहीं दादा साहब यही है, और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
0: बस
1: हमें
0: अदनान,
1: इसमें
0: आप
1: अल्लाह ताला
0: लेकर चलें,
1: जगह दी।
0: लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो तो वक्त तो अगले पता होता है वो होता है, लेकिन अकल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा,
1: यही
0: मैं खुद
1: दादा
0: ही कॉलेज में
1: साहब,
0: चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर
1: यही
0: बन
1: दादा
0: जाऊंगा,
1: साहब
0: मेरी किस्मत में
1: बंदा,
0: लिखा हुआ है। तो ये
1: यही
0: चीज़ें
1: मैं
0: तो अपनी
1: कहता हूँ,
0: जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता है इलेक्शन, जीतता तब बनता है।
1: बस मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हर अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी बेटी कुछ करना चाह रही थी, तो मैं डाउट था, फिर मैंने उस चीज पर टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है, कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो तो बाहर से बदल गया हुआ। मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है। तो फिर मेरी तसल्ली हुई, इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं राजा
0: बहुत
1: साहब
0: शुक्रिया अदनान,
1: इंशाल्लाह
0: आपका,
1: कल,
0: आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं, डेविन हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, लेकिन चूंकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज पढ़ के या अपने काम पे लगा हो, ये हमारी एडिक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
1: साहब देखिए मैंने हमेशा एक चीज आ रखी है कि जो टाइम होता है ना उस पर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है, मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना है, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुवाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, स्कूल नहीं प्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है।
0: यही तरक्की का
1: तो
0: राज है,
1: यही
0: यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें।
1: सब कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें,

0: और इससे ही आपकी क्या कहते हैं आपकी हिम्मत आती है।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह अब रब्ता रहेगा।
0: सब ओके ओके अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अली अमीन जो कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी दे रहे थे, अपना तजिया भी पेश कर रहे थे। गपशप की शक्ल में सामान हम कोशिश करते हैं गपशप की शक्ल में प्रोग्राम करें, बड़े बड़े वज़नी सवालात करना या बड़े बड़े वज़नी जवाब लेना, फिर बहुत सारी बातें जो है वो समझने से भी वो कानों के ऊपर से भी गुजर जाती हैं। तो इंसान को सारी बातें करनी चाहिए लेकिन एक दोस्ताना माहौल में करनी चाहिए।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजसमान एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजसमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजसमान सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजसमान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वजीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पर जिक्र किया है कि वह इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक, ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखे ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुन्नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र और नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, बाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, और तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पे आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पर अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे, और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सिन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमाया इन्न लहू बुर्ज़ातन फिल जन्नत, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिन अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए। उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाई, तो नऊज बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हकीकत, आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक अभी